0: लिखता रहे, फटा शायर बनी तेरे बोला करके हंसी कदी।
1: वाह यार गाना बड़ा वधिया यार, किन्ना तुसी देखो क्रिएटिव किन्ना। थैंक यू भाई जी यार, तुसी बड़ा वधिया गीत सुनाया आज, पहली यारी मैं सुनया। वाह।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते। एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते।

0: बिल्कुल मेरे नाल जुड़ गए ने जी हुसनैन जी, साडे बहुत अच्छे दोस्त ते विश्व पंजाबी सभा दे नाल बड़े गहरे संबंध ने जिन्हां दे। देखो विश्व पंजाबी सभा ही है जिन्हां ने देखो हुसनैन जी अपना मेल करवा दिता है,
1: जी हमें
0: ते विश्व पंजाबी सभा दा तुसी एक वैसे ओ सुनाउंदे होंदे वी विश्व पंजाबी सभा दा जिहड़ा मेन एक परपज ही है ना, कि विछड़े दोस्तां दे मेल करवा दिंदी है। मैं अज ही दस रहा सी कि कोई शिकागो तो आ रहा है, कोई सियाटल तो आ रहा है, इंडिया तो कोई आ रहा है, और साडे कैनेडा दे विच कोई ब्रिटिश कोलंबिया तो आ रहा है, कोई अल्बर्टा तो आ रहा है, न्यू फाउंडलैंड तो भी एक दोस्त आया हुआ सी, न्यू ब्रंसविक तो आया हुआ सी, वक्खरियां वक्खरियां स्टेट्स तो कैनेडा दियां तो लोग पहुंचे हुए सन। सो विछड़िया दे मेल देखो मैं अगे कह रहा सी कि एक तां सिधांतक पक्ष हुंदा है कि बहुत सारा लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਰਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
1: ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮਜਲਸਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਕੁਝ ਪਰਮ ਤੇ ਪਾਰ ਨਾ ਹੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।

0: टेस्ला के व्हीकल्स से भी काम करते हैं, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट की सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च, स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी From Insurance for You
2: 416-509-1509
3: or visit insuranceforyou.ca।

0: Vote Poll.
1: Authorized and paid for by the Campaign Office of Gurpreet Hillo.
2: Rocky, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह, यार नंबर ता दई मोना जी दा?
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: ओ दलजीत दुसान बड़ी
6: भाई, आप क्या लेने आए हो?
5: शुद्ध देसी घी।
6: लो भाई, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
5: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते, घी सेहत के लिए खाते। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
6: नानक घी भाजी,
5: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
7: आज
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
9: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
10: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर, आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
0: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
11: देखो जी, करता है अपना नंबर 1, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना होवे।
12: बस इनी गल

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।

खूबसूरत सुबह का आज, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्कांसिया, चलो डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक जिसे सुन रहे हो उत्थे आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओंटारियो के सानू बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज यानी कि सारनिया के बॉर्डर तो लैके नाइग्रा फॉल के बॉर्डर तक, नाइग्रा फॉल तो लैके बैरी, बैरी तो लैके सानू मस्कोका काउंटी तक जिथे ग्रैवनहस्ट तो लैके ओरेलिया तक सुनते हो 411 हाईवे के उपर। उ नॉर्थ ईस्ट के सानू लिंडजी पीटरब्रो होंगे हुए तुम साउथ के बेलवेल तक सुनते हो, इंटायर जी टी ए लंडन किचर वॉटलो कैम्ब्रिज होंगे हुए तुम सानू सारनिया तक और चटन तक सुन रहे हो। तकरीबन 1000 किलोमीटर के रेडियस में ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ अमेरिका और कैनेडा के सुनते हो इस लार्जेस्ट रेंज कवरेज फ्रीकुएंसी के नाल डिजिटल फ्रीकुएंसी M530 जिथे मैं थोड़े लिए एक टैकेट तो भी वध दा समा हो चुका है जिथे इस दूर दर जिहड़ा है तक सुन वाले साडे इस चैनल नूं तुसी सुनदे हो उहदे उपर शो प्रजेंट करदे हां। आप सब दा हार्दिक स्वागत करदे हां एक बार फिर तो। आप सब दा जो कॉल दा इंतजार रहेगा कि भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का इंतज़ार है, जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतज़ार है। चल पियो सफर दे वल और अपने घर तो कम, कम तो घर तक। शो दे विच मैं इस पीरसन एयरपोर्ट के ट्रैक 6 तो जिथे फेडेक्स अपनी उड़ान भर चुका उत्थे इंटरनेशनल जिहड़ियां फ्लाइट्स ने वो भी इस समय एग्जिट कर चुकिया ने एयरपोर्ट नूं, यानी कि हवा दे विच जो उन्हां दा काम उड़ना जिन्हों पर रिस्क कहने कि बहुत रिस्की होंगे वो रिस्क लेंदिया ने उड़दिया ने, एयरपोर्ट पर खड़े रह के उन्हें इज्जत नहीं बनती, हवावान चीरन रिस्क लैन ही जिंदगी बनती है इन्हों की। तो आप भी इस तरह है कि एक जगह पर खड़ के खड़ोत की है कि जिंदगी बहुत समय कट जानी चाहिए है, ठीक है, अप एंड डाउनस आने तो मेरे भी आते हैं, आपते भी आने, चलते रहेंगे ने, इंसान भी चलता रहता।

0: भी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: रियल एस्टेट दी दुनिया विचाओ अपने सुपनिया नु सच कर वखाओ फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
2: रियल एस्टेट दी बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
1: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
2: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
1: 905-671-2000
2: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ
3: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ बोल रहे हो
4: ड्राइविंग लाइसेंस
3: नो
4: पुलिस ऑफिसर
3: नो नो
4: ट्रैफिक लाइसेंस
3: नो
4: डन
5: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज दा काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
6: माय फेवरेट मेरी पहली पसंद
7: आई लव इट
8: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती
6: हम सबकी पसंद
9: रेडियो आवाज
6: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 टू 10 एंड सैटरडे 10 टू 1 ऑन AM 530 नॉन स्टॉप कॉल्स नॉन स्टॉप टॉक्स प्रमोट योर बिजनेस विद अस कॉन्टैक्ट 416-518-3200

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477 02 2023 647 702 2023 license number 10394।
1: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां।
2: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तो वधिया कोई नहीं।
3: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखू 416-819-6000।
4: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विच हन।
5: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दयां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, म्युनिसिपल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
4: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो, 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट प्रेमगिल.ca।
5: पेड फॉर बाय प्रेमपाल गिल।

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासिल फ्री मूविंग के लिए HK Mover।
3: Listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM.

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: हां जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
3: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
2: चार टिकटा दिल्ली दियां ते दो अमृतसर दियां मिल जानगियां?
3: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो तां साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दियां चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नां, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
4: 32-55-80. 905-450-2828 905-450-2828

0: रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हूँ।
1: तब फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम सिडोवकुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
0: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
1: इना कॉल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर।
0: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
1: आज ही कॉल करो नीलम सिडोव नो
0: 647-739-8710।
2: मैं क्या किथे जा रही है?
3: 10 वरी क्या पिछो हाक ना मारिया करो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी चली सी।
2: ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी हूँ 60,000 स्क्वायर फीट ते मूव हो गया।
4: 100 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन, हर तरह की ग्रोसरी ले पहुंचो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 416-700-9100।
5: हर प्रकार दे शीशे अते विंडो आदले रीति ग्लास एंड विंडो, टेबल टॉप्स, फर्नीचर ग्लास, बार आदले कस्टम डिजाइनिंग भी अवेलेबल है। रीति ग्लास हुण वाशरूम दे शावर नूं शीशे दी दीवार अते डोर्स नाल बहुत ही खूबसूरत बना दिंदे हन। तुसीं इन्हां दा शोरूम जरूर चेक करो। रीति ग्लास एंड विंडो 9057908335-790-8335 और विजिट www.reetiglass.com।
6: हर महीने मैकेनिक नूं पैसे दे दिंदे हो, ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नूं गोद ले लिया।
7: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
6: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
8: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
6: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
8: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसिसागा। कॉल 647-581-9999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
9: आ पैणे खरीद लिया गहने?
10: किथे छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
9: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
10: गल ता तेरी सही है पैण, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन?
11: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच थानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 9052308800।
12: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
13: विजन वैनिटीज दे न्यू शिपमेंट आ गई है, बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ, कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्पेशल प्राइसेस। इन्हीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज दे सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक, कॉल 9056711800, 905-671-1800।
14: कंडीशंस अप्लाई।
15: Okay, let's go.
16: All right, Indian Fruitland ਤੇ ਆਟਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਟਾ 11.99 ਦਾ 20 ਪਾਉਂਡ, ਬਰਾੜ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 3.99 ਦਾ 1.8 ਕਿਲੋ, ਬਾਸੀ ਸ਼ੱਕਰ 199 ਦੀ 2 ਪਾਉਂਡ, ਟਾਟਾ ਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ 899 ਦਾ ਕਿਲੋ, ਨੰਬਰ 1817 ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 10.99 ਦੇ 8.8 ਪਾਉਂਡ, ਮਹਿਰਵਾਨ ਜੂਸ 299 ਦੇ 3 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਸਵਰਨਾ ਮੈਦਾ 199 ਦਾ 4 ਪਾਉਂਡ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟਲੈਂਡ, 7 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਬੱਚਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟਲੈਂਡ।
17: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर, आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
18: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
19: तुसीं मैनूं 2 नवीयां साडियां तां लै दो।
2: दो नवी जे 25-30 साड़ियां तेरे को अगे पई अलमारी तू भरी साड़ियां ना, होर की चाहिए तेन?
19: ओ ता सारा मोहल्ला देख चुका या।
2: चल इदा कर, अब मोहल्ला ही बदल लेने।
15: फिट्टे मु तेरे।
16: Are you ready? ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ 647-429-4040। ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 647-429-4040। ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 647-429-4040। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਜਾਂ ਲੌਂਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: आज खुश तो बात हो गया था।
4: ओ ता होना ही है जो तीनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तैं नकदा बनदा ही है।
3: आज मेरे पास बिल लिखे हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
4: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स इंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट।

0: हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीडीबी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कॉल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिए
1: क्या क्या रहा है
0: यहाँ पर ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
0: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204 13-13 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
3: एक लाइफ है जिसे लव है
4: ये कहते मुझसे सब है
5: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: मौसम मौसम मौसम लवली मौसम, क्या बात है, बड़ा ब्यूटीफुल. यू नो शाम हो गया तो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नो ऑन कर चुके हो. सब तो पहला बता दें देश परदेश की स्टूडियो से घड़ी दे शाम के 3:07 से 31 सैकेंड हुए ने. तजिंदर सिंह सिद्धू सदमा वाले वालों सारे ही स्रोतों प्यार मुहब्बत न सत श्री अकाल जी आनो जी सबनों. जी हाँ, बहुत सारा ढेर सारा सत्कार अज के प्रोग्राम के हूँ तो लैके ठीक शाम के 6 बजे तक अपनी मुलाकात है. 1 घंटा असी लगावे तो फिर अगे जाके बहुत कुछ होएगा, खबर भी होनगियाँ कैनेडा दियाँ जी, तो बहुत चर्चा होएगी. तो मेरे वालों सब नी
1: जी नाल साथ दे रही है मैं मनप्रीत कौर तूर. मेरे वालों भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल ते बहुत बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच. उम्मीद है तुसी सारे मौसम नू पूरा इंजॉय कर रहे हो ते साडे नाल तुसी जुड़ चुके हो पूरे 3 घंटिआं दे लई. ते स्टूडियो दा नंबर 1-1 हुंदा है, साडे नाल तुसी गलबात करदे हो हर रोज़ 905-564-6444 905-564-6444 दे उपर तुहाडी साडी गलबात हुंदी है. हर रोज़ 3 घंटे दा टाइम हुंदा है ते उम्मीद है कि तुसी अज भी प्रोग्राम दे नाल जुड़ चुके हो.
0: अच्छा मनप्रीत, 7 तरीक हो गई अज अक्टूबर महीने की.
1: हाँ जी,
0: पर मौसम जब पहला मेरा फिक्र ही वो सी लवली लवली मौसम. एक शिव कुमार साहब का बड़ा प्यारा गीत है.
1: हाँ जी,
0: अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्ग है ना, धुप खिली हुई है पूरी प्यार मुहब्बत वाली है ना, ते बाहर बहुत वधिया मौसम आ ती सारिआं नूं इंजॉय कर रहे होणगे क्योंकि जिन्ना भी आपां नूं हुंदा विंटर तों पहलां पहलां जिन्ना भी आपां नूं बोनस दे विच मिल जाए ना,
1: हांजी,
0: ते ओह दिन अपणे वास्ते वधिया ही ने.
1: बिल्कुल,
0: धुप देखण नूं मिलदी क्योंकि आपां लोक तां फिर भी इस कम कार ते जुड़े रहिंदे हां ना. जिहड़े लोक जिहड़े धुप दे शौकीन ने गोरे लोग,
1: हाँ
0: जी, फिर स्नो पैंदी आ अपने चिट्टी चादर जी बैठदी है ना, ते फिर ओह भजदे आ अपने आइलैंड वल नूं.
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, ते आपां तां फिर भी कई वार कम करदे लगे रहिंदे आ, पर उहनां दा पक्का ही हुंदा वी जाणा ही जाणा.
1: बिल्कुल, हाँ जी,
0: जदों विंटर दे विच 1-2 महीने पासे लाए होणे आ जद तई फिर इधर खुल जाता मौसम.
1: हाँ जी,
0: पर अपने भी हम बजुर्ग एवं करते हैं ना, फिर जलो विंटर
1: पंजाब
0: लाए आते हैं, पंजाब च मेले गेले हो जाते
1: हैं,
0: पौन पानी चेंज हो जाता,
1: ब्याह
0: शादी देखी शादी देख
1: लीजन
0: पूरे चार्ज हो गया उत्थ.
1: हाँ जी,
0: गर्मियों के
1: बिलकुल
0: तो तुहाडे नाल रहांगे, गल्लां बातां पूरियां होणगियां ते गाणे गीत संगीत वलखों भी तुहानूं पता ही है कि देश परदेश दे विच जदों दो जणे मैं ते मनप्रीत बैठे होईए फिर तुहाडे लई गीत संगीत भी वधिया हुंदा
1: जी.
0: पर सब तो पहला उस वाहिगुरू दा अकाल पुरख दा धन्नवाद करिए, दुना कर लईए उहनां ही थोड़ा.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कहिंदे ना कि सुख वाले भी अरदास ते दुख वाले भी अरदास कम आउंदी आ
1: जी.
0: चाहे दुख होवे सुख होवे तो परमात्मा नूं याद करना अपना फर्ज बनता ही
1: जी.
0: मैं देखा कि मेरे वर्गे जिहड़े कई बार कहिंदे ना मैं जदों ना बैठ ते जाना हमेशा वाहिगुरू तेरी कृपा
1: हां जी
0: कह के जाना है ना,

0: ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
2: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल करो 416-453-3081 ते 416-457-3381।
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
0: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24